साई राम डियर लिसनर्स, भगवान बाबाज फ्री फ्लोइंग लव फॉर ऑल क्रिएशन स्प्रिंग्स फ्रॉम द डिवाइन सोर्स एंड इज नॉट इम्पोज्ड बाय फोर्स. इन टुडेज डिस्कोर्स बाबा एक्सप्लेन्स दिस पॉइंट एंड सेज दैट व्हाइल वर्ल्डली नॉलेज शोज अस ओनली मल्टीप्लिसिटी एवरीवेयर, लव अलोन कैन एनेबल अस टू सी द यूनिटी अंडरलाइंग द मल्टीप्लिसिटी. Let us now listen to a divine discourse delivered by Bhagwan Baba on March 1st, 2003 in Prashanti Nilayam during the holy festival of Shivaratri.

सर्वदा वर्तमानोऽसि स एव मयि भजत। सर्वभूत स्थितं यो वा भजत्ये कत्वमास्थितः। सर्वदा वर्तमानोऽसि